0: मैम तो ये
1: अभी बारिश का मौसम है तो मच्छरों के लार्वा बहुत ज्यादा है, उम्मीद है इससे कमी आएगी।
0: चिंतिक चिंतिक ने हम या समोका अपन मांगे तो पिसा मंगुरांगी।
2: निरंतर जांच की ये प्रक्रिया समुदाय को सजग और सुरक्षित रखती है।
3: दो बाथरूम नेगेटिव, पानी का जग उसमें भी नहीं।
2: बगीचे में रखे गमलों और टबों को भी देखना जरूरी है, इसे हटाना होगा एहतियात के लिए। अगले घर में ऐसा कुछ नहीं मिला, अच्छा संकेत है।
3: मैं बाथरूम चेक करना चाहती हूँ, साफ ही दिख रहा है और मच्छरों के लार्वा भी नहीं है, थोड़ी धूल और रेत है बस, है ना?
2: टीम का एक हिस्सा घरों के अंदर जांच जारी रखता है, दूसरा हिस्सा बाहर वो सब हटा रहा है जो मच्छरों को पसंद आ सकता है, गिरे हुए पत्ते और पानी के रास्ते में ये गीला मलबा, वो मच्छरों और उनके अंडों के लिए एकदम मुफीद ठिकाना है। आज के मिशन में जो कुछ भी मिला सीधे स्वास्थ्य अधिकारियों के पास जाता है, वो डेंगू से लड़ाई का ईंधन है।
3: डेंगू बुखार के मुख्य वाहक एडीज इजिप्टी मच्छरों को पनपने से रोकने में ये अभियान बहुत ही ज्यादा असरदार रहा है।
2: इस तरह की कार्रवाई जन स्वास्थ्य को सुधारने में सेमरांग की कोशिशों का हिस्सा है। दूसरा काम स्वास्थ्य अधिकारी जारोपिया वार्दी का है, उनका खुफिया हथियार ये कैप्सूल है। घुलने के बाद ये डेंगू के संक्रमण को रोकने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें मच्छरों के अंडे होते हैं जिनमें वोल्बाकिया नाम का बैक्टीरिया डाला गया है।
4: वोल्बाकिया मच्छर अच्छे होते हैं, वो पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करते हैं, उन्हें मारने की जरूरत नहीं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान देते हैं।
2: कुछ ही दिनों में अंडे तैयार हो जाते हैं, मच्छरों को बैक्टीरिया से नुकसान नहीं होता, लेकिन वो डेंगू के वायरस को फिर से पनपने नहीं देता, इसीलिए संक्रमण कम कर देता है और मच्छर उसी इकोसिस्टम में पॉलिनेटर और दूसरे जानवरों का भोजन बनते हैं। उधर पालेबोन इलाके में लोग शुरुआत में हिचक रहे थे, मच्छरों को भला कौन अपने आसपास मंडराने देता।
4: शुरुआत में सभी निवासियों ने बाल्टियां नहीं ली, कुछ मान गए कुछ ने मना कर दिया। मुझे लगा अभियान कैसे चलेगा, लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, कुछ ने तो बाल्टियां ही फेंक दी, मुझे गुस्सा भी आया। लेकिन दो महीने बाद जो लोग पहले मना कर रहे थे वो अब खुशी खुशी राजी होने लगे। उन्होंने कहा, मैम आप वोल्बाकिया की बाल्टी यहाँ छोड़ जाएं, ये मच्छर अच्छे हैं, नुकसान वाले नहीं।
2: उनकी पड़ोसी श्री मूलियाती को भी मच्छरों की भिनभिनाहट से परेशानी नहीं, यहाँ करीब 95% मच्छर वोल्बाकिया पॉजिटिव हैं, नुकसान वाले नहीं।
5: रोज के अनुभव में तो सब कुछ वैसे ही लगता है, कल तो और भी ज्यादा मच्छर थे। जब कभी बारिश होती है मच्छर आ जाते हैं, तो मेरे लिए तो कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, सब वैसे ही लगता है। लेकिन जब मच्छर काटते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती, ये शायद ऐसे ही काम करता होगा और वैसे कुछ बुरा भी नहीं हुआ।
2: डेंगू का कहर 2024 में आया था जब दुनिया भर में लाखों मामले सामने आए और 11,000 मौतें हुईं। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया डेंगू का हॉटस्पॉट है। जलवायु परिवर्तन ने मुसीबतों को और बढ़ा दिया है, गर्म होता तापमान और भारी बारिशें मच्छरों के लिए स्वर्ग हैं। 16 लाख की आबादी वाला सेमरांग शहर डेंगू के खिलाफ अपनी लड़ाई की वजह से इंडोनेशिया के सबसे स्वस्थ शहरों में माना जाता है। इलाकों के आधार पर सिर्फ 3 साल में डेंगू के मामले 50-70% कम हुए हैं। योग्यकर्ता की इस लैब में वैज्ञानिक जानलेवा मच्छरों को नुकसान न पहुंचाने वाले कीड़ों में बदलने के लिए वोल्बाकिया के अंडों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हर हफ्ते होने वाला 80 लाख अंडों का उत्पादन अब 3,60,00,000 अंडे प्रति सप्ताह तक हो गया है। अच्छे वोल्बाकिया मच्छरों की पीढ़ियां यहां तैयार होती हैं, उनके बच्चे भी वोल्बाकिया बैक्टीरिया लेकर पैदा होंगे और फिर डेंगू नहीं फैला पाएंगे। यूस्की रोहमन जैसे लैब टेक्नीशियनों ने सालों तक मच्छरों को अपना खून दिया, अब मच्छरों को

0: गाय का खून दिया जाता है।
1: वोल्बाकिया मच्छरों के काटने पर वैसा ही महसूस होता है जैसा किसी आम मच्छर के काटने पर। खुजली होती है और थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन मुझे उसकी आदत पड़ गई है और मुझे उन मच्छरों की सुरक्षा पर भरोसा है। चिंता नहीं करता, देश ने मुझे जो दिया इस वोल्बाकिया प्रोजेक्ट की बदौलत मैंने वो देश को लौटाना सीखा है।
2: मच्छरों की एक रिपोर्ट जी तुम सुनी है। मच्छरों के नाल नाल मैं लगता भी क्योंकि हर जगह के उत्ते मच्छर अपने तरीके नाल काम कर करके दिखाते हैं। तो सतलुज मूवी के नाल जुड़े कुछ एक जड़े इशूज़ ने वो भी थोड़ी जी सुन ली है छोटी जी खबर, फिर इस तो बाद अगे वधदे हां।
3: ट्रंप आख्या होया है बेशक फिल्म नूं जी फाइव तो हटा दिता गया है पर पंजाब दी सियासत लगातार इस दे इर्द गिर्द घूम रही है। एक पासे जिथे भाजपा आगू रमनीत सिंह बिट्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अपना पक्ष रख चुके हैं तो दूजे पासे फिल्म दा लगातार विरोध कर रहे बिट्टू नूं भाजपा दे ही कुछ आगुआं वल्लों सोच समझ के गल करन दी सलाह दित्ती जा रही है। दरअसल रवनीत बिट्टू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फिल्म नूं लैके कुछ सवाल चुके सन। उन्होंने फिल्म विच अपने दादा तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दी मौत नाल जुड़े सीन उपर भी इतराज चुके सन।
4: उसमें दिखाया गया है जो दिलावर सिंह ह्यूमन बम बना है, जो गाड़ी में बैठता है वही वहां से, वो बिल्कुल मैं फिर चैलेंज करता हूं वो 100% गलत है। दिलावर सिंह जो ह्यूमन बम था वो अलग आदमी है, उससे कुछ लेना देना ही है खालरा केस से उसका। वो बिल्कुल उनसे उस इंसिडेंट से ना उनका परिवार ना कोई उस गांव का है वो, ना कोई रिश्ता है उनका। वो भी हनीत रेन ने पिक्चर को चलाने के लिए वो उसे जोड़ा गया है दिलावर सिंह ने उसके साथ।
3: हुण पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री अते भाजपा दे सीनियर आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी फिल्म सतलुज दे विवाद ते टिप्पणी कीती है। द ट्रिब्यून नूं दित्ते इंटरव्यू विच उन्होंने कहा है कि रवनीत बिट्टू सोशल मीडिया उपर मृतक क्लीनशेव व्यक्तियां दीयां तस्वीरां सांझियां करके बेवजह इस मुद्दे नूं उभार रहे ने। उन्होंने कहा है कि खालड़ा लापता हुए लोगों के सबूत इकट्ठे कर रहे सन अते इस विच कुछ गलत नहीं सी। उन्होंने कहा कि अतीत नूं स्वीकार करना अते उस तों सीखना जरूरी है पर नवी पीढ़ी नूं पुरानी घटनावां दे आधार ते भड़काउणा खतरनाक साबित हो सकदा है। तत्काली पुलिस मुखी KPS गिल बारे उन्हां कहा कि सूबे विच अत्तवाद नूं खत्म करन विच उन्हां दी भूमिका नूं नज़रअंदाज नहीं कीता जा सकदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि घटनावां नूं पूरे प्रसंग विच देखा जाना चाहीदा है। उन्हां कहा कि जे करीब 25,000 लोग मारे गए हैं तो 1,800 पुलिस मुलाजम भी अत्तवाद नाल लड़दे हुए शहीद होए, हजारां बेगुनाह नागरिकां ने भी जानां गवाईआं ने। उन्हां कहा दोहां धिरां वल्लों होईआं वधीकियां दी सच्चाई सामने आउणी चाहीदी है। पंजाब तो राज्यसभा मेंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने फिल्म सतलुज बारे बहस मुकान की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट उपर सांझी कीती पोस्ट विच लिखा है कि यह फिल्म पंजाब के इतिहास विच कथित मनुखी अधिकार उलंघनावां दे एक खास पन्ने नूं दर्शाउंदी है। खालड़ा केस कानूनी तौर ते लड़िया गया है अते मामले विच सजावां हुईआं ने। उन्होंने कहा ना तो यह पंजाब फाइल्स है ना ही पंजाब विच दहशतगर्दी के पूरे इतिहास नूं पेश करन दी कोशिश करदी है। इसे तरह ना तो दलजीत दुसांझ ने अते ना ही फिल्म दे निर्मातावां ने अत्तवाद नूं जायज ठहराउण जां मिलीटेंसी कारण हुईआं तकलीफां नूं घट करके दिखाउण दी कोशिश कीती है जिसने पंजाब दे सब तो काले दौर विच हजारां बेकसूर नागरिकां सुरक्षा कर्मचारियां अते सरकारी मुलाजमां दी जान लई सी। उन्होंने लिखा हुण जदों हर पंजाबी नूं इह फिल्म वेखण दा मौका मिल गया है पुराने जख्म फरोलण जां बीते वेले बारे बहस करन दी बजाए इस बहस नूं मुका देना चाहीदा है। उन्हां कहा कि पंजाब दी मुश्किल नाल कमाई हुई शांति नूं अजिहे गैर जरूरी वरतांतां कारण खतरे विच नहीं पाया जाना चाहीदा। उधर भाजपा लीडर अते सीनियर वकील HS फूलकर ने एक निजी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू विच जसवंत खालड़ा वल्लों अंकड़े खंगालन नूं सही ठहराया अते कहा कि इह फिल्म किसी किताब उपर आधारित नहीं बल्कि कोर्ट दे रिकार्ड ते आधारित है। फिल्म ते लगे बैन नूं गलत ठहराउंदिआं उन्हां कहा जे तुसीं इतिहास दे काले पन्ने बारे गल करोगे तां कि अग्गे तों अजिहीआं घटनावां दोहराईआं ना जाण उस बारे एक्शन वी लओगे ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।
2: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज़ मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From

वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की। ओमी ने लोगों से अपील की कि आप अपने निजी जिंदगी के काम से थोड़ा वक्त निकालकर एक बार सोनम वांगचुक की बातों पर ध्यान दीजिए। ओमी के जैसे ही बॉलीवुड के कई हस्तियों ने सोनम वांगचुक के हालात पर चिंता जताई। एक्ट्रेस जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, प्रकाश राज, ऋचा चड्ढा, अतुल कुलकर्णी और लेखिका अरुंधति रॉय जैसी कई हस्तियों ने सीजेपी प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। वहीं कुछ के आवाज न उठाने पर लोगों ने सवाल भी किया। मसलन आमिर खान से लेकर बिग बी अमिताभ बच्चन तक से सवाल किए गए कि आप कुछ क्यों नहीं बोलते, क्या है समर्थन करने और न करने वालों का पूरा माजरा समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 14 जुलाई 2026 यानी आज लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 17वां दिन है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रदर्शन में 28 जून को सोनम वांगचुक शामिल होते हैं और भूख हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। सोनम सीजेपी के दूसरे प्रोटेस्ट में भी शामिल रहे थे, लेकिन 28 जून से वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुद्दा देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षाओं में कथित धांधली, मसलन नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामलों के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन। बीते 16 दिनों के अनशन से सोनम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। 13 जुलाई की शाम तक सोनम का वजन 8.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड सामान्य माने 120-80 से घटकर 109-70 हो गया है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत पर सरकार का कोई एक्शन या रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने इसे लेकर आवाज जरूर उठाई। 13 जुलाई 2026 को ही लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री जयती घोष ने एक संयुक्त बयान जारी किया। वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की रिक्वेस्ट की और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दिखाया। बयान में कहा गया कि हम आपके उद्देश्य, दृढ़ संकल्प और साहस को सलाम करते हैं, जिसके साथ आप देश भर के छात्रों और युवाओं के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आगे अपील की कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आगे की लंबी और कठिन लड़ाई को ध्यान में रखते हुए इस भूख हड़ताल को खत्म करने का विचार करें। ये संघर्ष कोई छोटी दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी मैराथन है। आने वाले दिनों में हमें आपकी ताकत और नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद 14 जुलाई के सुबह एक्टर ओमी वैद्य का भी वीडियो आया। आई डोंट वॉन्ट फुनसुक वांगडू टू डाई कैप्शन वाली इस वीडियो में ओमी कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूं, वो बेहद दिलचस्प इंसान है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अद्भुत काम किए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बेहद विनम्र हैं। मैं सभी से कहूंगा कि उनके बारे में जानिए और देखिए कि वो इस समय किस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक का समर्थन राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। ओमी आगे कहते हैं कि चाहे आप उनकी बातों से सहमत हो या नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये व्यक्ति अपनी जान गवाए, वो बेहद प्रेरणादायक इंसान है और मैं चाहता हूं कि वो जीवित रहें। वीडियो के अंत में ओमी वैद्य ने कहा कि हम सभी आम लोग हैं और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं होता, लेकिन अगर आप इन विषयों को समझेंगे तो हो सकता है कि आप भी उनसे सहमत हों। संभव है कि ये समस्याएं आपके परिवार या आपके दोस्तों के जीवन से भी जुड़ी हों या फिर आपने खुद कभी इनका सामना किया हो। ओमी के अलावा एक्टर अभय देओल ने भी इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर पोस्ट की। 14 जुलाई को पोस्ट की गई इस तस्वीर के साथ कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन टूटे दिल की इमोजी ने बता दिया कि अभय कहना क्या चाहते हैं। एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक पोस्ट किया और लिखा कि मैं वांगचुक की मांगों का सम्मान करती हूं, मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करें, ये भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा हमने प्रोटेस्ट साइट पर भी कई एक्टर्स को सोनम के सपोर्ट में खड़ा देखा। मामला लीगल है वेब सीरीज में पेप्सू जी के किरदार से जाने जाने वाले एक्टर सुधीर सांगवान सीजेपी प्रोटेस्ट के पहले दिन से ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। 11 जुलाई को एक्टर प्रकाश राज जंतर मंतर पहुंचे थे, सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल हुए थे। इससे पहले भी वो सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दे चुके हैं। 6 जून को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट हुआ, तब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया था। वहीं अतुल कुलकर्णी ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूथ के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। फिल्म जगत के इन हस्तियों के समर्थन की खूब चर्चा भी हुई थी और चर्चा अब उनकी भी

0: हो रही है जिन्होंने समर्थन नहीं किया। मसलन बीते कई दिनों से एक्स पर अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के उस एपिसोड की क्लिप पोस्ट की जा रही है जिसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए थे। यूजर सवाल कर रहे हैं कि आपने तो सोनम वांगचुक के साथ एक पूरा एपिसोड किया था, उनके काम की तारीफ की थी, लेकिन जब वो यूथ की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कह रहे। सवाल आमिर खान से भी पूछा जा रहा है कि आपने तो सोनम वांगचुक से प्रेरणा लेकर फिल्म में उनका किरदार निभाया, उनके ही स्कूल में फिल्म का एक हिस्सा भी शूट किया, लेकिन अब जब वो अनशन पर बैठे हैं तो आप पूरी तरह से खामोश हैं। सवाल तब और तीखे होते जा रहे हैं जब उसे फिल्म में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य उनके समर्थन में आ खड़े हुए, लेकिन आमिर कुछ नहीं कह रहे। लोग पूछ रहे हैं कि साइलेंसर ने तो अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया, लेकिन रियल लाइफ के फुनसुक वांगडू कब बोलेंगे। खैर, इस मामले में जो भी आगे जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल जी, जिथे एक कलाकार ने तो अपनी जिम्मेवारी निभाती पर बाकी कितने सुते ने यह भी थोड़ा जहा सामने नज़र आना चाहिए, क्योंकि लगातार जड़ा उन्हों का बीपी घटता जा रहा है, तो नाल दी नाल ही होर भी कई खबर जड़ियाँ ने रिलेटेड आ रही हैं। थोड़ी जी गलबात और सुन लें, फिर वापस मिलते हैं तो बाकी की गलबात जी शेयर कर दें।
2: वांगचुक की भूख हड़ताल 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अब तक उनका वजन 8.2 किलोग्राम गिर चुका है। हम विस्तार से इस वीडियो में आपको उनकी सेहत से जुड़े अपडेट्स बताएंगे, डॉक्टरों की राय बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और लेखक ने एक साझा संयुक्त बयान में सोनम वांगचुक से क्या अपील की है, फिल्मी बिरादरी के और पॉलिटिकल जगत के कौन से अभिनेता और नेता हैं जो उनके समर्थन में आए हैं, और किन लोगों की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। आज हम आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन को एक नैतिक बल प्रदान करने वाले पर्यावरणविद, शिक्षकविद सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टरों के हवाले से कुछ आंकड़े जान लीजिए। भूख हड़ताल का 17वां दिन 14 जुलाई को, वजन 8.2 किलो घटा। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज गिरकर 67 mg/dL यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार नीचे जा रहा है। हमने एम्स के डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर नवल विक्रम से ये पूछा कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ पानी और नमक के सहारे इतने दिन भूखा रहता है तो उसका इसके शरीर पर और शरीर के अलग अलग अंगों की गतिविधियों पर किस तरह का असर पड़ता है।
3: बहुत समय तक खाना ना खाएं या फास्टिंग रखें तो सबसे पहले हमारी हमारी बॉडी में काफी स्टोर्स होते हैं इस तरह की चीजों से हमें बचाने के लिए। सबसे पहला स्टोर जो होता है वो ग्लूकोज का होता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन जो है वो कंज्यूम होता है और बॉडी उसको कंज्यूम करके मेंटेन अपनी मेटाबॉलिक रेट और वो जो अपनी स्ट्रक्चर को, फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है। मगर ये ग्लाइकोजन जो एक तरह का फ्यूल होता है जो क्विक यूज के लिए होता है, कभी भी अगर हम फास्टिंग नहीं होती तो क्विकली ग्लाइकोजन इस्तेमाल होता है। तो ये शुरुआत के 24 से 48 घंटे तक अगर कोई कुछ नहीं खाता है तो बॉडी का ग्लाइकोजन जो लिवर में होता है वो सबसे पहले इस्तेमाल होता है। अगर उसके बावजूद भी फास्टिंग जारी रहती है या फूड खाना कोई नहीं खाता है तो फिर और भी जो फ्यूल होते हैं जैसे फैट, हमारी बॉडी का फैट है वो फिर ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। फैट भी ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज एक मेन चीज होती है जो बॉडी के हर ऑर्गन जो होता है उसको इस्तेमाल करता है। अगर ज्यादा लंबा समय हो गया फैट भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए तो उसके बाद मसल ब्रेक डाउन शुरू होता है। मसल जो हमारे लीन टिश्यू होती है वो सबसे एंड में होती है, क्योंकि मसल बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन एंड में शुरू होता है वो एक्सट्रीम फास्टिंग के समय। हार्ट का जो फंक्शन है वो भी कम होने लगता है, हार्ट रेट जो होता है वो भी कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी फॉल करता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल जो होता है उससे नीचे कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल करने लगता है, हार्ट का फंक्शन जो ओवरऑल होता है वो फंक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि बॉडी में फ्यूल कम है तो हार्ट उस एफिशिएंसी से काम नहीं करता है, हार्ट का फंक्शन भी कम हो जाता है।

0: होते हैं, बट हम हमारी प्रेयर्स होती है वहाँ पे, जैसे कि पूजा, जैसे कि पूजा होती है वहाँ पे, प्रसाद होता है. और हमारा जो आगा खान आ रहा है, ही इज कमिंग ऑन द 23rd, सो हम सुपर एक्साइटेड है. लोग एडमिंटन से आएंगे, विनिपेग से आएंगे, सस्काचुअन से आएंगे, कैलगरी से आएंगे, तो हमारा काफी प्रोग्राम चलता रहता है, जश्न चलता रहता है, एंड वी आर सो एक्साइटेड. और हम पोस्ट भी करते हैं ऑल द टाइम, गरबा करते हैं, गाना गाते हैं.
1: काफी फन होगा जी वहाँ पे. ये सिनेमा जी जाई तो है, बट अभी इस तो बाद ने फन करना जाके.
0: Yes.
1: वहाँ पे खाना गाना बजाना सब कुछ होगा,
0: सब कुछ होगा, चाय होगी.
1: चाय भी होगी.
0: यस बिल्कुल.
1: तो चाय तो देते हो किसी को, बाहर वाले को भी नहीं देते?
0: नहीं, जो वहाँ पे होते हैं, बट यहाँ पे हमारे
1: अलाउड नहीं है वैसे, है ना.
0: अगर जो आप आपके जो स्पाउस है जो नॉन इस्माइली है, वी वेलकम देम, दे आर अलाउड टू कम एंड दे आर अलाउड टू, वहाँ पे आप ड्यूटी भी कर सकते हो.
1: अच्छा, वॉलंटियर भी,
0: ये वॉलंटियर भी कर सकते हो आप, वहाँ से हमारे साथ बैठ भी सकते हो, तो ऐसा नहीं है. बट मोस्टली इट्स द इस्माइली, हमारी इस्माइली कम्युनिटी काफी बड़ी है वैसे तो,
1: जगह तो हाँ जी,
0: या और जगह भी इतनी छोटी है, राइट. बट ऐसे नहीं है कि हम अलाउड नहीं करते, हमारे पास नॉन इस्माइली स्पाउस है, दे आर ऑलवेज विथ अस.
1: ठीक ठीक है, बिल्कुल जी. बड़ा अच्छा प्रोग्राम का समय चल रहा है. और जाते जाते कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो आप?
0: नहीं, जस्ट अगर जो आपको कोई भी, लाइक आई सेड, अगर जो आपको कोई चीज की भी जरूरत है, इफ यू वांट टू जस्ट गेट अ सीएमए डन आपका घर का, और आपको पता नहीं आपके घर की वैल्यू क्या है, या तो आप बिजनेस खरीदना चाहते हो और आपको जस्ट मॉर्गेज, जैसे कि मॉर्गेज ब्रोकर चाहिए या लॉयर चाहिए या अकाउंटेंट चाहिए, आप प्लीज हमें रीच आउट करें, हम आपकी हेल्प कर देंगे. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सिनेमा. बड़ा अच्छा लगा आप आगे एकदम. मैंने आज वैसे, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ हफ्ता के पहला काफी इन्होंने मेरी हेल्प भी की थी, जो आप जमात
0: स्टैम्पीड
1: ब्रेकफास्ट था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था. और उत्थे भी काफी वड्डा भरवा कट्ठ हुंदा, ते काफी दुनिया भर दे वधिया वीआईपीज एंड दूसरे लोकी पहुंचदे. सो सिनेमा ते डेफिनेटली, क्योंकि जमात दे नाल रिलेटेड है, बट उस तो इलावा भी वैसे भी जिदा मैं पहला भी दस्सिया भी साडे चंगे फैमिली फ्रेंड्स ने पिछले कुछ समय तो आप लगातार, चाहे वो बॉलीवुड नाइट्स हो या दूसरे हर जगह देते नाल हेल्प कर दी. सो थैंक यू वेरी मच रीमा.
0: थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी.
1: गुड लक फॉर योर बिजनेस.
0: थैंक यू सो मच, एंड आई होप टू सी मोर पीपल हु आर लिसनिंग आउट देयर, एंड आई लव टू कनेक्ट विद यू ऑल. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. थैंक यू वेरी मच जी. ते ए सी जी सलीमा जी ने आपा गलबात की थी फेसबुक वाले दोस्तों ने दसती है, ते जांदियां ने एक बारी फिर तो छोटा एक कमर्शियल मैसेज जेड़ा सुन लेने, फिर उस तो बाद थोड़ी जी गल्लां बातां जेड़ियां ने होर करदे हैं. इस
2: प्रीमियम फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है.
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है.
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो, ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो.
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो.
2: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे.
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते, या कॉल करो 587-360-6890.
2: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी.
4: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदा.

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

0: She was one of the top three artists in Pakistan,
1: yes,
0: जो सूफी म्यूजिक के अंदर आबदा परवीन का आप नाम लें, इतनी बड़ी आर्टिस्ट यटीना सानी है, तो सनम मारवी इज वन ऑफ देम एंड शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. सनम मारवी जो पूरे वर्ल्ड में सब परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने जो गाने गाए हैं, चाहे वो आबदा परवीन के गाने हों चाहे उनके अपने गाने हों, वो सारे बिल्कुल दिल से छू लेने वाले गाने रहे हैं हमेशा. तो हमने डिसाइड किया कि हम ये शो कैलगरी में इतना बड़ा हम शो लेके आते हैं ताकि यहाँ की ऑडियंस भी उनको एंजॉय कर सके. और ये खुशखबरी की बात है कि वेस्टवी एंटरटेनमेंट कैलगरी के लिए इतना सारा काम कर रहा है.
1: हर
0: महीने शो लेके आ रहा है तो
1: यस जो कि पहले कभी नहीं हुआ कि एक ही कंपनी जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो बार बार शो
0: लेके आए.
1: बहुत अपना एक शो करना मुश्किल है. आप तो माशाल्लाह यो है
0: सेकंड शो विद इन अ मंथ. हमारी टीम जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है पूरी
1: जी,
0: और ये चीज रुकेगी नहीं, चलती रहेगी
1: इंशाल्लाह. यू नो अब मैं आपको बताऊं, जो है सनम मारवी का जब आपने मुझसे जो है मेजर शेयर किया तकरीबन 15 साल पहले, सनम मारवी के ऊपर जो है एक जो है डॉक्यूमेंट्री बनी थी
0: जी.
1: उनकी अपना जिन्होंने बनाई थी उनका नाम है तानिया पंजवानी, जो कि अपने इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी से है
0: जी.
1: यूएस से. उन्होंने मुझे फोन किया कि हम ये बना रहे हैं तो हम यहाँ आ रहे, कैलगरी भी आ रहे हैं क्या, फिर तो हम आपके रेडियो शो पे आना चाहते हैं, मतलब बाय ऑल मींस. तभी वो शो पे आए थे. फिर हमने जो सनम मारवी हमने इंटरव्यू किया था
0: जबरदस्त
1: पाकिस्तान से पहली बार
0: जी.
1: और देयर वाज माय जो है अपना इंटरेक्शन विद जो है सनम मारवी के साथ जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इंसान है. ओ माय गॉड, डाउन टू अर्थ पर्सन है. और म्यूजिक तो यू नो जिस तरह वो गाती हैं, जैसे अभी जैसे वो सूफी गाती हैं, सब वो अल्लाह को जिस तरह वो याद करती हैं, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. बहुत बहुत बहुत जो पहुंची हुई जो है आर्टिस्ट है. आई थिंक इट विल बी जो है लॉट्स ऑफ फन. थोड़ा टिकट के बारे में बात करते हैं, देन वी गो मोर डिटेल्स कि टिकट कहां से मिल सकती है.
0: जी, टिकट का हमारा लिंक हमारी जो है हमारी वेबसाइट भी है westfieldentertainment.com
1: जी.
0: उसके अंदर भी बाय टिकट का लिंक है, उससे बाय कर सकते हैं. अदरवाइज टिक्स वर्क्स के नाम से साइट है, उसमें मिल जाएगी. फेसबुक में आप सर्च करें सनम मारवी तो हमारा पेज है वेस्टफी एंटरटेनमेंट का, उसके अंदर भी है. और जलाल भी आपने उस पर भी आप शेयर कर देगा
1: बिल्कुल,
0: पेज से भी
1: बिल्कुल, yes.
0: तो जो गूगल पे सर्च करेगा सनम मारवी इन कैलगरी दे विल फाइंड आउट द लिंक. टिक्स वर्क्स की साइट है, वरना westfieldentertainment.com से जाके भी लोग टिकट बाय कर सकते हैं इसकी.
1: ठीक है, westfield राइट
0: या westfieldentertainment.com.
1: चलो मैं डाल देता हूँ हमारे entertainmentcom. यू कैन गेट योर टिकट्स राइट देयर. ओके, देयर यू गो. तो राहिल भाई, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट आपके माश जो है आपके जो पार्टनर्स है, आप रिजन भाई और अशर है, आपकी उनके साथ मिले, कहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हुई?
2: दोस्ती तो हमारी काफी अर्से थी बट ये कि मैं और रिजवान जो कि बेसिकली
1: जी
2: काफी अर्से से प्लान कर रहे थे.
1: अच्छा.
2: दो साल पहले से कि हम कुछ ऐसे इवेंट्स करते हैं कैलगरी में. थोड़ा सा एक काइंड ऑफ अ वैक्यूम था कैलगरी में, आपको पता है कि पाकिस्तानी सिंगर्स और जो फनकार हैं वो थोड़े से आते हैं बट उस लेवल पे हमें नहीं मिल रहे थे.
1: राइट.
2: तो काफी अच्छे से हम कोशिश कर रहे थे एंड देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वेस्टफील्ड ने अली हैदर को इंट्रोड्यूस किया कैलगरी को
1: जी.
2: अब मारवी आ रही हैं एंड देन हमारे फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लान्स हैं. इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेंगे काफी फेमस फनकार आ रहे हैं पाकिस्तान से.
1: सुपर डुपर.
2: सो यस, अशर इज आल्सो हमारे फैमिली फ्रेंड है, वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन.
1: अच्छा.
2: आई विश के वो यहाँ होते आज हमारे साथ बट बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम और इंशाल्लाह वो ही विल बी देयर बिफोर 3rd. सो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ये मौके बार बार नहीं आते. सूफी कलाम आपको लाइव सुनने का आई थिंक दिस इज द बेस्ट मौका. सो गो फॉर इट. 3rd August, Moonlight
1: जो है अपने बैंक्वेट हॉल. आई लव योर जो है लोकेशन. आई थिंक 2 हफ्ते पहले जब मैं वहाँ गया किसी शादी में गया था, आज की शादी बहुत हो रही क्या करे, तो मैंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हॉल है. इट्स वेरी आप जो है कहीं भी आपको सीट मिलेगी. अच्छा, व्यू बहुत अच्छा
0: है. मूनलाइट बिल्कुल ओपन हॉल है और उसके मैंने ये नोट किया कि उसके हर कोने से आपको स्टेज का व्यू मिलता है
1: जी.
0: उनका स्टेज नॉर्मली बहुत अच्छा बना हुआ है और हॉल भी खूबसूरत है और हमारी रिक्वायरमेंट की सारी चीजें वहाँ मौजूद है और वी हैव अ गुड कैपेसिटी. जो लोग आएंगे वो बहुत आराम से वहाँ बैठेंगे और एंजॉय करेंगे वहाँ शो.
1: जी जी जी. और जो सनम मारवी हम जैसे बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स जो कि आ रही है August 3rd को, उन्होंने कोक स्टूडियो में उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं, तो शी इज वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड. उन्होंने

0: ने जो है पूरी दुनिया उन्होंने कॉन्सर्ट किया है और आई थिंक वी आर वेरी लकी जो है टू हैव हर इन कैलगरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ए लॉन्ग टाइम. वो जो है काफी सालों पहले आई थी और नाउ एंड सो नाउ शी इज कमिंग बैक जो है बैक टू जो है कैलगरी अगेन. तो एक अगला गाना हो जाए और अपना जो सनम मारवी का.
1: जी जी बिल्कुल.
0: आपने आपकी कोई चॉइस है या रिजवान भाई एनी कोई चॉइस के मैं के प्ले एनीथिंग?
1: राहिल भाई मुझे भी गाड़ी में गाना सुना रहे थे
2: जी. ख्वाजा फरीद का एक नमाज.
0: एक नमाज.
2: इश्क नमाज.
0: इश्क नमाज. इश्क नमाज सनम मारवी. There we go.
1: जब आप मौसीकी को सुनेंगे तो इसके अशार को सुनेंगे तो आपको जो जरूर आएगा और सोचेंगे लाइव सुनने में क्या रहेगा इसका.
0: तो इन्होंने जो है ये जो अब्दुल परवीन के साथ ही इन्होंने गाया है. ओ, क्या बात है.
1: अब्दुल परवीन के साथ परफॉर्म किया मैंने.
0: जिस आजा जो अब्दुल परवीन तो लेजेंड है पाकिस्तान की. प्राउड ऑफ जो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान एनीवेयर इन द वर्ल्ड माशाल्लाह. और उन्हीं के साथ उन्होंने ये भी गीत भी बनाया है जस्ट ये एडवर्टाइज खत्म हो. और इनके जो जितने अपने वीडियोस हैं जितने इनके गीत है सारे मिलियंस में इनके व्यूज हैं.
1: सब मिलियंस व्यूज.
0: सो शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस.
1: शी स्टार्टेड लाइक हर कैरियर आई थिंक फ्रॉम 7 years ऑफ एज.
0: वाओ.
1: या 7 years ऑफ एज उन्होंने अपना गाने की लर्निंग स्टार्ट की थी और 2009 में उनका पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था. हम आपको बताएंगे मजीद.
0: तो लीजिए एंजॉय करें इश्क नमाज़.

तो ये थी सनम मारवी एंड आबदा परवीन, और जो है सनम मारवी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन पाकिस्तान, जो कि हमारे शहर खिलगी आ रही है। अगस्त की 3 तारीख को इनका जो है

0: का कॉन्सर्ट होने जा रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम और इट्स गोना बी एट मूनलाइट बैंक्वेट हॉल. बड़ा अपना प्यारा जो है अपना बैंक्वेट हॉल है. और आज का जो शो है सर जो है आज का जो जो शो सलाम नमस्ते क्या लगे इसको स्पॉन्सर किया है अवर गर्लफ्रेंड like our good friend Kandril Sohail. And again, if you're looking for any car, any model, especially Toyota, of course, you can visit their website, www.cstoyota.com, or you can call them 403-290-1111, or you can visit their website 24/7, cstoyota.com, and think Toyota, think the giant Kandril Sohail. Mobile mortgage specialist Rubina Kasamli, she works for TD Bank. उनकी बेटी भी टीडी बैंक के लिए काम करती है. इफ यू लुकिंग फॉर एनी मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट एनीथिंग यू कैन कॉल हर 403-870-7069 एंड शी विल गिव यू द बेस्ट रेट अवेलेबल विद द टीडी बैंक. बटकड़ा है बैंकट हॉल जो कि हमारा गुड फ्रेंड हमजा बट ही ओन्स इट. अगर आपका कोई छोटा इवेंट हो अबाउट 200 to 300 पीपल फॉर एनी वेडिंग फॉर एनी जो एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी यू कैन कॉल हिम हमजा भाई 5873520094 5873520094. If you take my name, you'll get the best price guaranteed. Phir agar if you're looking for any jewelry, Pakistan Design Jewelry in Canada, Rizan bhai, agar aapko koi jewelry chahiye to 825-987-5000. Our good friend Shahzad Mian saab, you can get the Pakistan Design here in Canada only at one place, Nasim Jewelers, Calgary. 825-987-5000. अगर अपने चश्मे बनवाने हैं कॉन्टेक्ट लेंस और या तो सनग्लासेस बशीर सोमानी अवर गुड फ्रेंड ही इज बी डूइंग इट फॉर लास्ट 40 years. इनकी अभी शॉप है इन न्यू हराइजन मॉल. यू कैन विजिट हिम और कॉल हिम एट 403-720-3937 403-720-3937 आइज बाय बशीर. एंड ऑफ कोर्स टॉक अबाउट जो है कंट्री सोयोटा. दे आर द गोल्ड
1: स्पॉन्सर फॉर सन ऑफ मारवी. अनाउंस करने वाला था कि हिल सोयोटा एंड साउथ पॉइंट टोयोटा दे आर आवर गोल्ड स्पॉन्सर फॉर सन ऑफ मारवी शो एंड थैंक्स टू देम क्या उन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया और वी वेलकम देम क्या कहते हैं वेस्टफील्ड एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनर शो शो स्पॉन्सर्स करने के लिए.
0: यस फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ दे आर ऑन बोर्ड इंशाल्लाह long term they'll be
1: and thank you Jalal bhai aap hamare sath pehle show mein bhi the aap second show mein hamare sath hain aur we will continue this
0: inshallah yeah that's the plan yeah inshallah of course jo hai dil se jo kaam karta hai fir wo dil khud hi khud mil jate hain yaar
1: ji bilkul
0: Harel bhai manoge na aap bhi manoge Harel bhai
2: मैं तो मनवा के आया हूँ. मैंने कहा जलाल भाई से बात कर लेना.
0: जी जी जी जी. अच्छा हमने जो इंट्रोडक्शन तो दिया था लास्ट टाइम जो हरिजन में क्या करते हैं क्या क्या है कैलगरी में इनका आपका क्या इंट्रोडक्शन है आप क्या करते हैं क्या कब पाकिस्तान से आए.
2: सो जलाल भाई मैं पाकिस्तान से 2019 में आया.
0: अच्छा
2: जस्ट बिफोर पैंडमिक.
0: अच्छा
2: सो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से अरसे में मैं 3 शहरों में रहा कनाडा के.
0: अच्छा मतलब
2: ऑटवा में रहा मैं वैंकूवर में रहा.
0: अच्छा
2: एंड देन अब मैं कैलगरी में हूँ. बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ.
0: माशाल्लाह.
2: और मैं यहाँ सीपी रेल काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर डेवलपमेंट साइड है मेरी. बस ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कोई ऐसा
0: जितना. नहीं चलो यार जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स अ बिग थिंग स्पेशली इन कनाडा और आजकल तो आफ्टर पैंडेमिक इट्स सो मच वैल्यू नाउ ऑल दिस आईटी नाउ राइट. नो नो अल्लाह आपकी रोजी बस इसी तरह जो है बना के रखे हमें तो ये चाहिए इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे यहाँ पे. नो तो हियर वी गो जो है कैलगरी में अपना पहली बार आफ्टर लॉन्ग टाइम सनम मारवी आ रही है एट द मूनलाइट बैंक्वेट हॉल. वहां पर उनका इवेंट होने जा रहा है लाइव कॉन्सर्ट विद द लाइव बैंड. रिजवान एंड राहिल आर द ऑर्गेनाइजर प्लस अशर जी वो यहाँ पर अभी जो है मौजूद नहीं है. अच्छा टिकट्स कितने की है और ऑफ कोर्स वी जस्ट सेड कि हम जो है यू नो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए अपना सनम मारवी का प्लीज.
1: हाँ जी सनम मारवी के बारे में देखें थोड़ा सा बताऊंगा. सनम मारवी ने 7 साल की उम्र से सिंगिंग सीखना शुरू की और उनके जो जहां तक मैंने पढ़ा है उनके जो टीचर्स में से काफी बड़े नाम है इसमें नुसरत फतेह अली खान भी रहे हैं
0: माशाल्लाह
1: और आबदा परवीन के साथ तो परफॉर्म करती रही हैं और काफी बड़े आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया. फिर उन्होंने आई थिंक 2009 में सबसे पहले उन्होंने अपना एक इवेंट किया सिंधी फोक फेस्टिवल था उसमें उन्होंने अपना एक इवेंट किया. उसके बाद फिर तो वो कोक स्टूडियो पर कभी लंदन के कॉन्सर्ट उनके इवेंट्स चलते रहे हैं
0: जी.
1: और उनको आई नो कि उनके इंडियन फॉलोअर हमारे जो नेबर इंडिया था वहाँ भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. वहाँ भी परफॉर्म किया है वहाँ भी उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट किया. इसके अलावा उनके अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो उनको यूनेस्को अवार्ड 9th International म्यूजिक फेस्टिवल में मिला. शी इज द सेकेंड आर्टिस्ट आफ्टर नुसरत फतेह अली खान टू विन दैट अवार्ड. तो ये बहुत बड़ा है एजाज है उनका.

0: योर बिजनेस अगर आप चाहते हैं. सो सिल्वर अभी भी ओपन है हमारे पास, उसका हम डिटेल जलाल भाई आपके थ्रू शेयर भी कर देंगे.
1: यस या
0: सो प्लीज कम फॉरवर्ड अगर आपको मार्केट कराना है अपने बिजनेस.
1: वेरी वेल सर. जी जी रिजल्ट भाई और क्या कहेंगे?
2: जी बस ये है कि आप लोग शो की तैयारी करें, टिकट बाय करें, और हमारा शो जो है वो August 3rd को अगेन मूनलाइट बैंकवेट हॉल के अंदर है. टिकट के लिंक्स जलाल भाई ने कहा कि उनके कमेंट्स में मौजूद हैं. अदरवाइज वेस्टफील्ड एंटरटेनमेंट का फेसबुक पेज है, westfieldentertainment.com साइट है, उसमें भी आपको टिकट मिल जाएंगे, सारे उसमें लिंक्स मौजूद हैं. शो बहुत अच्छा होने वाला है. हमने जो इंतजाम किए हैं वो शो के लिए वो बहुत ज़बरदस्त होंगे. आपको हर तरह की क्वालिटी साउंड और लाइव म्यूजिक सुनने को मिलेगा. सर हमारी जो है वो अकेले नहीं होगी, उनके साथ पूरा बैंड उनका पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है.
1: नाइस.
2: तो दे आर द पीपल दैट इज वर्किंग विद सर हमारी फॉर लॉन्ग टाइम. तो वो लोग उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वही जेन्युइन लोग होंगे, वही म्यूजिक होगा जो वो बजाते हुए आ रहे हैं. तो वो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे.
0: इट विल बी प्योर लाइव म्यूजिक बाय द वे. बिल्कुल
1: प्योर लाइव. ठीक है. अभी आपने कुछ शेयर किया था अपना जो तो उमरान जान के जो तो प्रोड्यूसर का, वो क्या था?
2: मैंने बता रहा था मैं आपको, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बताता हूँ सनम मारवी के बारे में. 2010 में उन्होंने इंडिया में, इंडियन सॉइल में पहली दफा उन्होंने डिबेट किया था, जहाँ पे उन्होंने जहान खुसरू एक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल था जो अरेंज किया था. बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे मुजफ्फर अली, जिन्होंकी 1981 में मूवी बनी थी उमराव जान. तो उन्होंने अरेंज किया था और वहां पे सनम मारवी ने 2010 में इंडिया में परफॉर्म किया था. और उसके साथ, उसके अलावा उन्होंने इंडियन प्लेबैक सिंगर रेखा भारद्वाज के साथ परफॉर्म किया हुआ है एट टाइम्स ऑफ इंडिया अमान की आशा इवेंट के अंदर. वहां भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है. तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया बांग्लादेश सब जगह पे उनके चाहने वाले मौजूद होंगे.
1: माशाल्लाह. नहीं, आई थिंक द वे शी इज, उन्होंने जो है अपना, यू नो अभी हम जो इसका स्पॉटिफाई से अभी हमने जो गाना चलाया है, सो ऑफ कोर्स आई नोटिस कि उन्होंने बड़े बड़े सिंगर के साथ उन्होंने गाने गाए, इंक्लूडिंग जो शफकत अमानत, शफकत अमानत अली खान इज वेल, राहत फतेह अली खान साहब इज वेल, और साईं जहूर के साथ भी उन्होंने गाया है, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. तो अगेन गाइस, शी डजंट कम एवरी डे, शी डजंट कम एवरी ईयर, ये बहुत सालों के बाद आ रही है. तो आपने जल्द जल्द जो है टिकट ले लें, ताकि यू हैव, सो यू कैन गेट द बेस्ट चॉइस राइट नाउ. टिकट स्टार्ट फ्रॉम द 49, 79 and 120 VVIP. ऑफकोर्स द बेस्ट सीट, देन यू कैन
2: लिमिटेड सीट.
1: या दोज़ा लिमिटेड. और अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें तो प्लीज डू सो. यू कैन कॉल राहिल या तो हमारे जो है रिजन भाई. अगर आप मुझे फोन करें, मैं आपको नंबर दे दूंगा, यू कैन कॉल दम एज वेल. तो स्पॉन्सर, इसलिए स्पॉन्सर आर ऑलवेज द बैकबोन ऑफ एनी शो. तो प्लीज डू सपोर्ट. अगर आपके बिजनेस का, अगर आपने जो है, यू नो वट, आल गिव यू दिस, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है राहिल भाई, रिजवान राहिल भाई, उनका हम एक हफ्ता फ्री में एडवर्टाइज करेंगे ऑन माई शो. आफ्टर द शो आप लाइक जो है अभी तो आप करेंगे, आफ्टर द शो 3 to 10 के बाद जो अपने वेनिसडे आएगा, आई डू द फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट.
0: थैंक यू.
1: नो, फॉर जस्ट फॉर द लव ऑफ द म्यूजिक एंड लव ऑफ जो सनम मारवी, शी इज अमेजिंग.
2: सोच लें कि स्पॉन्सर्स के नाम कितने और इवेंट्स में हमारे इवेंट के बाद चलेगा. जलाल भाई के पास इवेंट्स आते रहते हैं.
1: प्लस लव फॉर यू गाइस एज वेल. आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए. जो हम कर सकते हैं हमारी तरफ से एज अ मीडिया पार्टनर, तो वी ट्राई टू डू. इंशाल्लाह शो अच्छे से अच्छा होगा. एक और गाना हो जाए. हाँ
2: जी जी बिल्कुल.
1: अच्छा कौन सा वाला आप जो वो आज आप कह रहे थे, वीर वेखो? नो
2: जी, यार वेखो.
1: तो यार वेखो, तो या विल प्ले फॉर अबाउट 3 minutes ताकि हमारे वीर वेखो. एवरीवन एंजॉय वन मोर सॉन्ग बाय सनम मारवी एंड रॉयल हयात.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक बाय सनम मारवी यस यार देखो अभी हमारे खाली दो मिनट रह गए एक बार फिर से डिटेल हो जाए यार रिजवान भाई वी हैव टू मिनट्स
1: या जी हमारा शो है अगस्त 3 को सनम मारवी का सनम मारवी इज वेरी फेमस सूफी सिंगर चाहे सिंधी लैंग्वेज हो चाहे उर्दू लैंग्वेज हो या पंजाबी कलाम हो तो उन्होंने आबदा परवीन और साई जहूर और बहुत सारे बड़े आर्टिस्टों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है शी परफॉर्म आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान टू बहुत सारे इवेंट्स किए हैं और हमारी लकीली एक अपना फुल इवेंट करने यहाँ पर आ रही हैं अगस्त 3 को अपने पूरे बैंड के साथ लाइव बैंड के साथ आ रही हैं हमारी लोकेशन है अगस्त 3 को ऑडिटोरियम बैंकेट हॉल में मूनलाइट बैंकेट हॉल में हमारा शो होगा अगस्त 3 को शाम 6 PM पे 6 PM पे डोर खुल जाएंगे 7 PM पे शो स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग उसको विद इन 3 आवर्स को वाइंड अप कर देंगे टाइम पे शो होगा आप लोग आए बहुत इंजॉय करेंगे इट विल बी अ फैमिली इवेंट लवली शो टिकट्स हमारे पास जो है हमारी साइट पे बिक्री है हमारी अपनी westfieldentertainment.com की साइट है और हमारा अपना फेसबुक का पेज है इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं westfield entertainment को आप सर्च करेंगे उस पर आपको मिल जाएगा जलाल भाई के पेज को आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स उनके कमेंट्स में लिखा हुआ है दूसरा ये है कि टिकट की प्राइस इसकी $49 से स्टार्ट होके जो VVIP सीट है $120 तक है वो बहुत लिमिटेड सीट है दे आर वेरी लिमिटेड सीट एंड दे आर वेरी क्लोज टू द आर्टिस्ट और बाकी इसके अलावा VIP है $79 की और लास्ट हमारी $49 की हमारी जो है ये रेगुलर टिकट्स हैं हॉल का व्यू बहुत अच्छा है दे विल एंजॉय द शो म्यूजिक विल बी प्रोफेशनल म्यूजिक और आप सब लोगों से है कि आप लोग आए टिकट बाय करें अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें
0: और स्पॉन्सरशिप के लिए फोन नंबर
2: आप 416-624-5838 पर कॉल कर सकते हैं इसके अलावा हमारे ब्रोशर पे रिजवान का मेरा और अशर का नंबर है आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं सिल्वर इज स्टिल ओपन एंड मेरा मैसेज यही है कि अगर आप बुल्ले शाह ख्वाजा फरीद वारिशाह को सुनना

0: YYC होम केयर। अगला सुनेहा ओएसिस स्माइल मेडिकल वालियां दा सानरिज मॉल दे लागे ने न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे ने एक्सपर्ट्स डॉक्टर दी वड्डी टीम है इन्हां कोल इत्थे जाण लई तुहानू किसे भी अपॉइंटमेंट दी लोड़ नहीं लंबियां लाइनां दे विच लगन दी लोड़ नहीं तुसी वॉक इन जा सकदे हो हफ्ते दे 6 दिन खुले हुंदे ने ते इन्हां दा फोन नंबर 5876174696 है जी ओएसिस स्माइल मेडिकल। प्रोग्राम दे अगले स्पॉन्सर मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स ने जी कैनेडा दी सब तो वड्डी डीलरशिप है स्टार डीलरशिप दा अवार्ड इना दे कोल है जेकर तुसी मर्सिडीज दे ब्रांड दे नाल जुड़ना चाहुंदे हो ते गौरव शर्मा नू कॉल कर लो ए तुहाडी डील नू होर भी सौखियां करनगे इना दा फोन नंबर 4039036757 है जी मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स। अज की गलबात बहुत खास है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साढ़े घर की गल है दादा दादी नाना नानी पोतरे पोतरियां ते दोते दोतियां का रिश्ता दुनिया का सब तो खूबसूरत ते निघा रिश्ता हुंदा है। अज असी इस दे नाल जुड़ियां हुई गल्लां बातां करनी है ते साढ़े नाल स्टूडियो च जेड़े गैसट ने वो दादी भी ने ते वो नानी भी ने सो उन्हां दे तजर्बे ते जो स्टडीज वो पढ़ के आए ने होरां दे तजर्बे भी वो अज दे इस प्रोग्राम दे विच साढ़े नाल सांझे करनगे। बहुत बहुत स्वागत करांगे अपनी टीम दे सीनियर मैंबर मैम गुरचरण कौर थिंदा। मैम सत श्री अकाल स्वागत है जी।
1: बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोबारा तेरे नाल अज प्रोग्राम करन लगे हां ते वो भी एक बहुत ही खास जी गल करन लगे हां सो थैंक यू वेरी मच
0: एहसास किन्ना कोई डिफरेंट सी ते की कुछ वखरा सी।
1: हां बिल्कुल मैं भी नहीं है कि बेटा जिन्ना भी ह्यूमन बीइंग्स दी जदों असीं गल करदे आ मनुखां दी गल करदे जां किसे भी स्पीशी दी गल कर लो तां कुछ जिहड़ियां चीजां ने ओह पुश्तदार पुश्त नसलदार नसल जिहड़ियां ने ओह चलदियां आउंदियां रहिंदियां ने एक नसल तो दूजी नसल पैदा हुंदी है दूजी तो तीजी नसल पैदा हुंदी है ते मैनूं लगदा है कि जिहड़ा मनुख है क्योंकि उहदे विच ज्यादा सूझ है ज्यादा बूझ है ज्यादा संवेदना है तां जदों असीं इक बाद नसल तो बाद दूजी नसल साडे होंद विच आउंदी है उस नसल नू प्राप्त करन दा अनुभव जिहड़ा है ना वो अनूठा ही हुंदा है ते हुण क्योंकि मैं मां भी बनी है मैं नानी दादी भी बनी है ते मैं ये महसूस कर रही हां कि जदों एक औरत मां बनती है ते उस वेले दा जिहड़ा अहसास है वो एक दर्द दे नाल भिज्जा हुंदा है ना वो एक शरीर दे विचों एक नवा शरीर पैदा होया हुंदा है किन्नी देर तां समझ नहीं लगदी कि हुण आपां रिएक्ट किवें करिए पर जदों आपां एक दादी बनदे हां नानी बनदे हां ते उस वेले जदों साडे घर दे विच नवा जी आउंदा है तां वो नवा जी जिहड़ा मैनूं लगदा है कि उस वेले दा हौलास जिहड़ा हुंदा है ना उस वेले दी जिहड़ी एक खास अगमी खुशी हुंदी है ना शायद वो मां बनन दे नालों भी बिल्कुल अनूठी हुंदी है क्योंकि थानू एक एहसास हुंदा है कि मेरे घर दे विच एक नवी जनरेशन पैदा हुई है ते मेरे घर दे विच एक नवा बूटा लगे है सो मैं वो दादी बनन दा भी अनुभव कीता है ते नानी बनन दा अनुभव भी कीता है सो ये एक बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता है जिहड़ा है कर सवलीन जीन्स दे राही है ना जीन्स दे विचों एक हमेशा ही नसल तो नसल जीन्स जिहड़ियां ने ओह गुण अगली नसल दे विच आउंदे जांदे ने ते बहुत रीझ हुंदी है ये किहदे वर्गा है ये दादे वर्गा है ये अक्खां मेरे नाल रलदियां जाने हर कोई उहनूं अपने नाल सिंक्रोनाइज करन दा यतन करदा ते दादी दादा ते होर भी ज्यादा करदे ने
0: जी जी। अज जिस कारण करके असीं इस विशे नूं चुणिया ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰਲਡ